क्यों हमने हजार साल की जिंदगी नहीं दी तूने, कितना प्यारा है ये जीवन हमारा धरती के ऊपर।